मरण लिखाए मंडल में आए सबना मरना आया विछोड़ा सबना हर जो जन्मे है हर जो बने है हर जो उपजे है उस हर एक ने मरना ता है जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए बाकी ये गल वखरी है ओ मौत जो आम लोका वास्ते जिवें कबीर जी का वचन सी जिह मरने सब जगत तरासिया जिस मौत ने लोकां दी मरण तो पहला ही जान कढ़ी मौत तां पता नहीं कदों आउणी मौत दे डर ने ही बंदे नूं मार रखे जीण नहीं पई देंदी जिह मरने सब जगत तरासिया सारा जगत तरा तरा कर रहा है जिस मौत जिहदा नां लैणा चंगा ही समझा जांदा चार बंदे बैठे होण कोई बंदा विच मौत दीआं गल्लां करन लग पवे कहिंदे ने कोई चंगी जी गल कर मौत की गल माड़ी गल है मंदी गल है चंगी नहीं लगती जीण की गल कर मौत की गल ना कर जिसनू भाई मूले ने भाई मरदाने दे उस दो पैसों के बदले मरना सच ते जीना झूठ लेके दिता सी जिसनू गुरु नानक ने प्रवान किया सी मरदाने आ कोई तो समझ वाला बैठा है इत्थे सियालकोट विच जिहड़ा मरण नू सच समझदा है और है भी सच जिंदगी दे बारे कई तरह के शुभे हो सकते ने शक हो सकते ने शंके रह सकते ने गर्भ विच है जो इसका जन्म होवेगा जिंदगी इस नूं प्राप्त होवेगी कोई पक्की गल नहीं है शंके वाली गल है जिसका जन्म हो गया है इस नूं कुछ उमरा प्राप्त हो सकेगी शंके वाली गल है ये बोल सकेगा ये तुर सकेगा शंके वाली गल है डर बनिया रहिंदा है पता नहीं चल सके ना चल सके सारी क्रिया शरीर दी ठीक चले ना चले कल नूं पढ़ सकेगा कि नहीं परिवार वाला बन सकेगा कि नहीं कारोबार चल सकेगा कि नहीं हर किस्म दे शंके हो सकणगे लेकिन एक गल परपक है हर एक जीव दे संबंध विच इह जिहड़ा जन्मे है मरेगा जरूर मौत ना टल सकेगी हर जीव ते आवेगी पर इस दे बावजूद भाई मूला तां कहिंदा सच है जो हर हालत च वापरना ही इह सच है ते जो नहीं रहना कल नूं जीवन वह झूठ है फिर भी मनुख चाहुंदा है सच की गल ना करो झूठ नहीं करो मरण की गल ना करो जग मरण ना पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े लै जाए जियो मता किते जम आवे ते फड़ के लै जाए बंदा हमेशा हजार जतन करता है मौत तो बच सकण दे ना कोई बचिया है ना किसी बच सकता जो सच है जो वापरना है इस तो बंदा डरता है कहिंदा जी गल ना करो जे मरने सब जगत तरासिया कबीर जी कहिंदे ने मैनू तां समझ ही आ गई है मरण विच भी एक आनंद है कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरा है मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद भावे मौत भी तीन तरह की कहिंदे ने शास्त्रकार कहिंदे ने एक तां मरना ओ हुंदा है जदों मनुख दा आत्मक जीवन शुरू ही ना हो आत्मक मौत बंदा मर जावे मरिया ही होवे एक तो मौत है मैं कमाउंदा मर गया मैं इथे उड़ीकदा मर गया मरिया ही होया बंदा जीवन शुरू ही नहीं होया क्योंकि जीण दा चज नहीं आया एक ओ मौत हुंदी है जिहड़ी शरीर करके हो जाती लेकिन एक मौत होर भी वो है मनुख दी हौं दी मौत मैं मेरी दी मौत जदों धर्म दे घर जन्म हुंदा है इस पासे दी मौत हो जाती हौं दी मौत हो जाती बंदा इस मौत तो भी डरदा जिसनू यह मरना आ गया ना उन्हू धर्म के मार्ग से जीना आ गया जिन्हू धर्म के मार्ग से जीना आ गया वह शरीर की मौत बड़ी छोटी समझदा है बड़ी तुच्छ समझदा है जिन्हों चज नाल जीना आ गया है सच्ची गल तो यह है कि चज नाल मरना भी उन्होंने आया है कबीर जी कहते हैं सो मरना गुर शब्द प्रकाश है गुरु के शब्द द्वारा मैनू मरण का पता लग गया है अब कैसे मरो मरण मन मानिया मरण ते चित करदा है हौं करके मरण नु चित करदा है उंज भी जे मौत आवे ची आया मोए मरने का चाव है मरो ता हर के द्वार उधर जीवन शुरू हो जावे मर मर जाते जिन राम ना जानिया मरदे ता ओ ने मरदे ही रहिंदे ने ओ जिउंदे भी मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां नु रब दा पता नहीं राम दा पता नहीं ईश्वर दा पता नहीं धर्म दा पता नहीं मरनो मरण कहे सब कोई हालांकि मरण दियां गल्लां बड़ियां हुंदियां मरण दे सच
ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਵੇਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ।

जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभु दूर। कवला चरण शरण है जाके, कहो जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरथ निज पद है दाता। कह

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्हों ने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

सब तो बड़ा धर्म साईं दी बंदगी है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल ते सब तो निर्मल धर्म। जिस वेले तू हरि दा नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लगता,

0: Stubbing the thing for day, call the star. Bus, bus.
1: मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड. मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड. पॉज. मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स. मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उना दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकलता है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नु प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सुची काया हर गुण गाया, हरी दे गुण गाउन नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहिंदे यह नापाक है, किथे मंदिर, किथे इसनु मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनु नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखते हैं यह डरौनी है, यह काया कहिंदे

अगर इसनु मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विचों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डराणी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डराणी बन जाएगी। फिर आखदे हैं

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहंदे अगर उसनू नहीं ए समझदी ते ए पशु तो प्रेत तो मुक्त तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है। कहंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख ने यह भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबियां लंबियां, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ए मूर्ख क्योंकि इसने अपनियां गलत आदतां बना लिया हैं, एडिक्शंस बना लिया हैं, सुभाव बना लिए हैं, अते उना चीजां नूं वरतदी है जिहड़ियां चीजां इस नूं कमजोर कर दियां हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है,

अगली गल पंजवन गुरु बाबा जी आखते हैं, अगर एक आया मंदिर ना बनी सरोवर ना बनी तो यह फिर दुखां दा घर है, या तो यह रब दा घर है नहीं तो फिर यह दुखां दा घर है, क्योंकि इस दे विच इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं, जो जो कमजोरी आंदी है बुढ़ेपा आंदा है, इतनियां बीमारियां पैदा हो जांदियां हैं कि इंसान फिर उन्हां दियां दर्दां दे नाल घुलदा घुलदा इस दुनिया दे विचों जांदा है। सब तो ज्यादा पेन जो है इंसान में फिर एक काया दी सर्जरी हुंदियां हैं, की कुछ हुंदा है। कहंदे हन यह शरीर ही फिर साडा एनिमी बनता है। बड़ी कमाल की गल महाराज ने बाण च लिखी है कि यह शरीर ही अगर नाम नहीं जपया फिर साडा एनिमी बनता है, साडा विरोधी बनता है। बाणी च आखते हैं इस तरह कहते हैं।

जे तेरा शरीर के तेते लगे दुख, उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानू दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानू खुद अपने आप चलना पैना। ये दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवां, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति

सगल शरीर आवत संतान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कईयां दी दवाइयां बनदियां हैं, कईयां दी स्किन साडे उत्ते पहनन दे योग हुंदी है, असीं पहन लैने हां। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन नू उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है? कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसे ना किसे काम आ जांदे हन मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी काम आती, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जरा किसे काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का। अगर ओ ने किया तो कहने निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इस दे सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनों रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इस दे नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। ऐ जो शब्द वर्त्या है, त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसदे त्रिकतानी है, त्रिकारतानी है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पहुंचा बैठा हां, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़िया किड़िया चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

मैं बंदा बेखरीद सखा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा जो पिन सतिसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

तो तुमसे लेना तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

करबाहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने नाम जपो हरन जन का प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी हा मतलब परमा चरण शरण हम अनाथ नाथ हरतन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आन के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी

मैं दूजी नहीं थार जिस पे हम जाएंगे तो तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएंगे।

हस्त पल्त प्रभाव सोए कार्य होए तुमने पूरे हर नाम जपत सुख सजे हर नाम जपत सुख सजे मदन होत साधु तुरे आवन जान रे थिप पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण

कीमती पोशाकें, कीमती वस्तुआं और ढेरी बना के उन्होंने अग ला दी। कोई मोह नहीं है, काफी सारा खजाना दरिया की भेट कर दिता। लोड़ अनुसार खच्चरां घोड़ियां ते रख लिया। अद्धी रात का समा ते आवाज दे के आख्या, सिखां दा गुरु सिंघां समेत किला छड़ रहा है।

पुकार के आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नई वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम शेखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान से।

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है न दंड है न मृत है न पंड है। अकाल है अपाल

कहे पली राज पूले, कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली पात, कहूं अश्व होए के बह बेग ऐसे, कथो मैं न आऊ कथो तो है कैसे, कहूं रूम आऊ कथो तो है कैसे, कथो

दुख है अंगा। खालसे के हों सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अरपाता, खालसा मेरो सुख एलादा।

पितर सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाही, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो पितर सिखाई। खालसा मात पिता सुखदाई, खालसा मेरी शोभा शीला। खालसा बंद सखा सद डीला, खालसा मेरी जात अर पत। खालसा मेरी जात अर पत, खालसा सो माँ को उत्पत।

मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना लेही शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी एक छिन पर भी ये मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना या मैं